0: अलकपुरी जी महादेव की जय, देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की ओम। हरिओम हरिओम।
1: विश्वगुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

0: चतुर्मेव सद्गुरु भगवान की जय। पांची पति मिश्रान नित्य प्रति सर्व प्रकार से बड़ी उच्च वृत्ति से विशुद्ध वृत्ति से जो उसी ब्रह्म रूप में लिपायमान रहते हैं उन महान सद्गुरुदेव के चरणार विंद में कोटि सत नमस्कार करके ये जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगति मोती सह सो हम स्वाहा। ओम ह्यम हम सो हम स्वाहा। ओम ह्यम हम सह सो हम स्वाहा। सर्वर्ते सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देव कर रहा हूँ वो हमारे सारे मनोरथ को सिद्ध करे। ओम अग्नेर वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिबस्वाहा। ओम अग्नेर वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिबस्वाहा। ओम अग्नेर वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिबस्वाहा। ओम ह्रीम ऐं त्रैलोक्य मोहिनी चामुंडा महादेवी सुरासुर बंदनी ह्रीम ऐं स्वाहा। ओम क्रीं कानेन्दी भेदनाय वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिब स्वाहा। ओम अग्नेर वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिब स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिब स्वाहा। परानं महाकालकालं कृपानं गुणांगार संसार
1: पार्वतीपदेयारामादेवी
0: दूसराजि संपातु गौरं गंभीरं
1: नमः पार्वतीपदेयारामादेवी
2: भगवान की जय।
3: भगवान
2: की जय।

ओम श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म

0: हरे राम। चलो गुड। हर हर शंभो
1: शंभो
0: शिव
1: शिव
0: महादेव,
1: महादेव, शंभो
0: शंभो
1: शंभो
0: शिव
1: महादेव,
0: महादेव।
1: शंभो
0: आई थिंक वी
1: शंभो
0: ऑल आर सो टायर्ड आफ्टर द सी
1: शिव
0: ना। चल शिव शिव शंभो शंभो। That's why I love things when they are not coordinated and not planned.
2: It's okay. Yo, okay, kirtan.

0: Svarupa che gatta, Om Namo Prabhudir Rama, Ramananda Durvasi.
1: Om Shalapurti Mahadev,
0: Ki Jai,
1: Vasudeveshwar Mahadev,
0: Ki Jai,
2: इंदुधरम सम्राट परमहंसम श्री माधवानंद पुरी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंसम